0: ले जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनाबॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।

0: हाथ निकल है बाइक ना बस
1: शंपन टिकट निकल है
2: पटना है टिकट कर ले।
3: पाखरू

अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर है।